को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस ट्रिप से परमिशन मिले। धन्यवाद। जय मसीह।

0: 6 megahertz. Changes your mood, inspires loving yourself, increases peace and strength, guides most of us and activities. Listen and enjoy Grace FM 107.6, the melody of your rhythmic life. Grace FM,
1: It's 4 p.m. अपराह्न को 4 बजे.
2: लो बे, होली को पार्टी से मिस करने वाले नहीं. हाँ भाई, मतलब ना जाने वो. भाई ना फिर क्यों वाले तो पहले बिहेव पार्टी ये सब फंक्शन में तो जन चिड़ चैट तो बर्बाद हिंदू बर्ने था मत कहाँ ना जाने मतलब आई
3: कुरु तीस में तो सनी ये सब मंगी सब गतिबल कोट पाइंट चलिया ठीक है पुराना कोट लगा उन्हें नया किताब पढ़ने बंचन एक किताब पढ़े बाशे
2: तेरी ये उखान तो पुराना वैसे ही अब तो नया कोट लाऊंगे नया पुस्तक पढ़ने को उनसे तो अरे ना क्यों बने सही बने मात्र रु 6000 मा ओम शक्ति टेलरिङले छानी छानी एकदमै राम्रो सुट सिलाएर दिन्छ क्या त्यति भए चाहिँ भएन त
3: ए मात्र 6000 मा कुट पनि
2: हो नि हजुर ओम शक्ति टेलरिङमा मात्र 6000 मा छानी छानी लाउनुहोस् निकै आकर्षक डिजाइनका कोट पाइन्ट साथै हामी कहाँ आकर्षक डिजाइनका भर पर्दो सिलाई उच्च स्तरीय सटिङ सूची स्कूल कलेज तथा अफिसियल ड्रेसहरू पाउनुका साथै रेडीमेड कोट पाइन्ट शर्ट लेडिज सुट र दौरा सुरुवाल अर्डर बमोजिम तयार गरिन्छ प्रोप्राइटर राजकुमार पण्डित सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9849725068 9808195919 ओम शक्ति टेलरी राम मन्दिर 4 भक्तपुर
4: समय परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको अनमोल उपहार भएकाले यसलाई बुद्धिमानी पूर्वक सदुपयोग गर्नुहोस् FM 107.6 MHz सुनौ र सुनाऊ

प्रक्रिया केना दिन थका दिशा यही पैसा थत नेम मनुया थासे तरीगु कुतायना दिस इनगु मया धागु निनगु धागु इनस धागु खगु निनगु जक्क मखु इनस गथे टाका सुन गुदु थका खेलिगु संकेत यातन ध्यान दिगु ख नेम मनुया सन्दर्भया दाइरा के दुहा हुने त फक्क कुतया संसारया त इनगु दृष्टिको र श्रेगु कुतया थजै आइगुले इन्स कथि टाका सुन गुदु ढका छिन थुइके फै इनगु दृष्टिको अवस्था थुइकेगु लक्ष्य तया दिस लुका च्यागु अध्याय पिस नेगु पी च्यागु पत्के धाटक दुख वो मिसा वेक या तो छुगु ख वेकल सी ढुकल धका टाका ग्या ग्या वेक या गु तुके भोचु वल अले वेक या तो छिया थगु लुए लागु ख फुक्क सिगु रेने दया बिल अले वेकल ढाल केहे माजु छ विश्वास यागुले छौरो लुए नन आ नौको हु यपि युनिको छिन छिगु जख चोपि मुनि त बालक ध्यान दिया छोला दिएला छिन छिगु जम खव चोपि मुनि त बालक ध्यान दिया छोरा दिएला यी सित खगो मरेका छु तया छुन धका संवेदनशील जिया दिएला बालक युनि झुइगु सिपिया अभ्यास जाना दिस छुके छिगु मुखी त छुकेगु क्षमता तदङ्गु सुधार जी मुखियाना छि मुन्तलिसे घनिष्ठ स्वाफु देखे फै वो इन त कुहाली आए फै छोयाले वचन मुना दिगु शिक्षक सितन परमेश्वर सवादिना जयसी शिष नपुतिन हे जक बाइबलीय प्रभावशाली शिक्षकको आत्मिकी नपुकेना दिन सोमन भिक्टर ट्रयादीको घोषणा जीवन हे नेपाल भाषा या रेडियो ज्याजो स्पाकमा फिट जुग विश्वास के चमकया दिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा सफु तया दिफै उचिया नीति जिनके जिनगु मोबाइल नम्बर 2 98 55 33 39 98 55 33 39 कासा ज्याजो नेना दिगुरी छित युक्त युक्त सुधा परमेश्वर छित सवादीमा जय हस्तु।

है वह सब आप ही का है। यहोवा राज आपका है और आप सबों के ऊपर मुख्य और महान है और आपका राज युगान युग का है।

राष्ट्रजनर शांति रेडियो को समावेशी आवाज ग्रेट एफएम 107.6 मेगाहर्ट्ज़।